आज की आखिरी अनाउंसमेंट पेश कर रहे हैं हाउ भाई बैराम जी बैर मैंशन के लाडले ऋतिक रोशन का ये सोलो आइटम।

हिंदुस्तान का मेरा दोस्त। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: मतलब ऐसे ही था यार, इट वॉज बेसिकली रिवीजन ऑफ द नोट्स दैट आई प्रिपेयर्ड।
1: फिर लास्ट क्वेश्चन, उन एस्पिरेंट के लिए जो यूपीएससी फील्ड में आना चाहते हैं उनके स्टेप क्या होने चाहिए?

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: टाइम चेक 3 मिनट्स आफ्टर 10। पकीज़ा

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओ, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।